जब कोई भी तरह नहीं वो स्टार्ट मेरे भयंकर स्कैन करे क्यों और से पहले जैसे एलुमिनपी अरे मेरे बता है कीड़े कौन बोला लेकिन अमीगो तू वीक है बहुत आज देखो मैं भी बचे कौन है दानवों की दावत और यहाँ खाने निकले डॉलर साइन और सीधे मौत

से मस्ती पूरे खोड़ा से घड़ोली तेरी खोद दे चमड़ी फेस की बकचोदियां हैं बातें घर की देखा मुझे तो यहां बंदियों की सांस चढ़ गई टांग फिसल गई बाप बोले बेटी बाहर निकल गई हाथ से वो करनी सत्ता कुछ भी रहने दे जाके बैठ ठेके के बार पैक पी के दिमाग स्ट्रेस सीधा दीवार पे ब्लेस्ड हूं या बीमारियां दोनों तेरा तेज है मेरा सो बोले रे मेरा फ्लो आके बोले मुझे के नो जैसा समाज में उसी का आईना वो बंदा था ब्रेवा वो फट्टू है भाई साहब वो बंदी थी परी अब

सिर्फ शक्ल से नहीं वैसे भी हरामी हूँ कोटिकल टीम मार से चढ़ गई आज खाली पोकट गले मेरे पड़ गई आज करे अद्दा डाउन बने कटरीना बेबी कर जा तो कॉल आ रहा मम्मी